0: 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

एक बहुत पुरान गाना हमने आपको सुना है, नॉन फिल्मी गाना, और गाना का बोल है याद फिर आए बाय मन्ना दे, 10 मिनटन फॉर जीवन ऑन द बीट ऑफ शंकर एंड जय किशन, द मेलोडियस वॉइस ऑफ किशोर दा. दिल दौलत दुनिया का वही मिठास हम आपको सुनाएंगे, एंड इज अ साउंड ट्रैक बैरिंगटन्स नाइन द आवर ऑफ सेवन. साथ में प्यारा साथी है.

गाना हो तो ऐसा ऐसन सुबह के वक्त में जब दिन होते होते तो होएगल दिल को खुश कर देते है दैट यू सेलेक्ट के इफ आई हैव अ या स्टक यू फाउंड द हार्ट ऑफ सम मिलियंस द माइटी मुका ओकन ओल्ड टाइमर

लगती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

live vanuit de hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उदित नारायण और साधना सरगम जी।

पहला नशा पहला खुमार, फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर, उदित नारायण एंड साधना सरगम से आप सुने जो जीता वही सिकंदर। हाँ, फिल्म कसूर का एक गीत,

और मोहब्बत हो ना जाए। कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने फिल्म कसूर का गीत। उजाला रेडियो है और जानकारी चाहिए आपको ना तो वेबसाइट पर आप देखें ujala.nl।

सुनने वालों, आपका और हमारा साथ यहीं तक। हम जल्दी फिर मिलेंगे यहीं पर उजाला रेडियो पर। तू जाने है तो।

0: खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से लड़कन गणपत सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते सोमवार को 71 साल की आयु में इनजीफ इख्तियार और रॉबर्टो गणपत सिंह, त्रेसी गणपत सिंह और स्वर्गीय साधना गणपत सिंह के माँ रोमाना और अमीरा के नानी परीक्षा के आजी आम्स्टरडम जोयतोस की रहने वाली विधवा बिसुंदी छुटकन की मृत्यु आईएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। त्रेस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री रॉबी गणपत सिंह के विधवा थी। आम्स्टरडम से लड़कन गणपत सिंह बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं। बीते सोमवार को 71 साल की आयु में इनजीफ इख्तियार और रॉबर्टो गणपत सिंह, त्रेसी गणपत सिंह और स्वर्गीय साधना गणपत सिंह के माँ रोमाना और अमीरा के नानी परीक्षा के आजी आम्स्टरडम जोयतोस की रहने वाली विधवा बिसुंदी छुटकन की मृत्यु हो गई है आईएमसी हॉस्पिटल में। त्रेस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री रॉबी गणपत सिंह के विधवा थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बुध के शाम में 6 बजे से 7 बजे तक और आने वाले शुक्रवार के शाम में 6:30 से 7:30 बजे तक। आउटफार्सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवैक 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 1:30 बजे जोंदख आंस्टांद हल्फ ट्वे किए जाएंगे वेस्टखार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। ये सूचना है सुनने वालों को कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इतफार्त फुरजोरखिंग परिवार छुटकन और परिवार गणपत सिंह के दुख में शामिल है।
1: सुनवालो उजाला रेडियो के जरिए और भी मृत्यु समाचार हैं आप सुनने के लिए ध्यान दीजिए। नीड लॉन्ग देन हक के रहने वाले सम्स परिवार दुर्गा बहादुर के साथ ये सूचना को करें हैं कि बीते मंगलवार 12 तारीख मई को 80 साल के आयु में लेफ्टिनेंट फॉन तख्तियार देन हक में स्वर्गीय मदन दुर्गा और स्वर्गीय सुखदेव दुर्गा सीताबी की बेटी भाइयों और बहनों अगस्त दत्त रूबेन लीला कुमार कमली रूपा राधा रवि और स्वर्गीय क्रिस के बहन सभी लड़कन के फुआ मौसी नानी आजी पर नानी और पर आजी देनहाग के रहने वाली राजकुमारी दुर्गा का देहांत हो गया है जो कि विधवा थे स्वर्गीय रामरतन मनोरथ का। नीदरलैंड देनहाग के रहने वाले समस्त परिवार दुर्गा बहादुर के साथ ये सूचना को करें हैं बीते मंगलवार 12 तारीख मई को 80 साल की आयु में इन लेफ्टिनेंट फॉन तख्तियार स्वर्गीय मदन दुर्गा और स्वर्गीय सुखदेव दुर्गा सीताबी की बेटी भाइयों और बहनों अगस्त दत्त रूबेन लीला कुमार कमली रूपा राधा रवि और स्वर्गीय क्रिस के बहन सभी लड़कन के फुआ मौसी नानी आजी

पर नानी और पर आजी। देनहाग के रहने वाली राजकुमारी दुर्गा का देहांत हो गए हैं, जो कि विधवा थे। स्वर्गीय राम रतन मनोरथ का रहते थे देनहाग शहर में, इनका देहांत हुआ है देनहाग में। और सूरीनाम देश में पहले रहते थे ग्राउंड ओस्त्रांत के जो रहने वाले थे, इनका देहांत हुआ है मंगलवार 12 तारीख मई को। और इन्हें लोग ज्यादा जानते थे आलमा के नाम से। अर्थी से आखिरी मौका है विदाई लेने के लिए। आज बुधवार के रात के समय सरे 8 से लेकर रात सरे 9 बजे तक ओंस जोरग ट्रिपस्ट्रैट 309 देनहाग शहर में दाह क्रिया को किया जाएगा सूरीनाम देश में। समस्त परिवार जान पहचान से निवेदन है इस खबर को और दूर तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार दुर्गा समस्त परिवार मनोरथ के दुख में शामिल है। यहां तक पेश की गए हैं उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न।

पड़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Thank you.
1: उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

कभी शाम ढले तो शाम तो हो गए हैं, अभी ना ढलल हैगा तब कम होगा। उजाला रेडियो के जरिए आप सुन रहे कॉफी चाय मेरा शो। कन्या हम लोग ना रह ली, या सोम्स हैप्पी फनी दाग दस दान ड्रुक है काम हम लोग करीला गोन है। दिस डू वी नेचुरली इन द मिडडे यूर आफ टू फॉर द ओंस्पानिंग। Maar soms dan ontkom je niet aan je eigen werk natuurlijk. We hebben ons eigen werk. Hier hebben we Kalida, Janta Kisewa. Daarnaast. Maar we hebben natuurlijk ons eigen werk. Kania, ja, helaas konden we gisteren niet de Coffee Chai middagshow maken. Maar we zijn er vandaag. Dus Bian Hemelsvaartdag. Bian bi hamlok vrijlebe. En dan heb ik vrijdag weer Coffee Chai middagshow. Maar, dus Aaj, Riga, Bianna, zoek je wel.

6:11 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये है आप ही का अपना उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। सभी प्रिय सुनने वालों को स्वागत करता हूं, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज़ है।

अच्छे मेरे प्यारे सुनने वालों, बुधवार 13 तारीख में साल 2026 और फिर एक बार आपका सेवा हम करने आए हैं लेकर प्रोग्राम, वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से बैक टू द फ्यूचर। कितने हफ्ते के लिए हमने आप सभी को प्रोग्राम सुनाए थे राजेश खन्ना जी, आज एक और मशहूर एवरग्रीन सुपरस्टार का प्रोग्राम सेवा में हम पेश करने जाएंगे। आज उनका पहला है और सोचता हूं 4-5 इनका प्रोग्राम बनाने का प्लानिंग में तो है 5। हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे सिनेवालो धर्मदेव पिशोरीमल आनंद ऑफ 12 देवानंद जी का, मशहूर एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का प्रोग्राम आराम करेंगे आज पहला, और इनके मूवी से नगमाएं निकाल निकाल कर प्लेलिस्ट को सजा रखा है और आप तक हम पेश करेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे ये प्रोग्राम के दौरान व्हाट्सएप के जरिए आप बातें करना चाहोगे तो आप सीधे स्टूडियो में व्हाट्सएप कर सकते हैं 020-363-0000। वहां पर भी कुछ बातें हो सकते हैं, टेंडेंस एट म्यूजिक तू जाने तक। और रहे आपके फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप दफ्तर को तार करें सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक फमान रख तो तुम्हें 7 लाख सुमोरखंस 3 यूर तो तुम्हें 3 मेदाख 3 यूर कुंतु बेल आप तार कर सकते हो अप 020-409-0807 020-409-0807। या तो कीजिए आप लगातार किसी भी मौके पर किसी भी दिन किसी भी वक्त एक मेल और मेल के जरिए भी आप उजाला रेडियो को कांटेक्ट कर सकते हैं आपके कामों काज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते info@ujala.nl हिल सिंपल info@ujala.nl। देवानंद साहब जी, इनके बारे में बहुत सारे लिखा गया है, आप इससे गूगल करेंगे तो बहुत आपको मिलेंगे इनके बारे में। तो आप अगर इनके बारे में जानकारी आप प्राप्त करना चाहोगे दनमुचू से ही कर इफ इंटरनेट उपसुको। हमारे ये प्रोग्राम में हमेशा म्यूजिक इनका वहीं पे हम ध्यान रखते हैं। वैसे तो ये एवरग्रीन स्टार ने लगभग 100 मूवीज में काम किए हैं और बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हमें दिए हैं। हमारे बीच नहीं रहा अख्तन तख्त यार, हाँ जी, 88 साल की उम्र में 2011 में इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गई और दैट इज नॉट 15 यार दित्यार दरी दिसंबर। तो ले चलते हैं आपको आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर, एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज में पेश करता हूँ ये नगमा। अमीर गरीब फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सिनेवालों, 1974 का फिल्म कि मैं आया हूँ। शुभरात्रि मेरे प्यारे सिनेवालों, खा रहे हो तो स्वादिष्ट भोजन हो एंड बेन टू अनतवेरिक तो दिल लगाकर काम करना, सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के गाड़ी चलाना, विदेश से आए हैं तो वेलकम और इस देश से गए हो विदेश फकांसी से तो एंजॉय।

जी मैं आया हूँ लेके साज हाथों में, किशोर कुमार की आवाज, आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी फिल्म अमीर गरीब से निकाले हुए। फिल्म निहतिन फिरन से इवन तक का है, 1974 का फिल्म, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत, किशोर कुमार ने गाए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर। और ये फिल्म अमीर गरीब मेरे प्यारे सुनने वालों मोहन कुमार का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी है, एवरग्रीन सुपरस्टार, जिनका आज पहला प्रोग्राम सजा रहा हूँ, बना रहा हूँ। देवानंद साहब जी ने काम किया है हेमा मालिनी के साथ, प्रेमनाथ, तनुजा, सुचित कुमार, जूनियर महमूद, सुलक्षणा भी है, मोहन छोटी बिरबाव। फिर एक बार तहदिल से स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे प्रिय सुनने वालों। मैं देखता हूँ 7 मिनट बाकी है सरे 6 बजने में। ये है उजाला रेडियो लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, स्वागत करता हूँ आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवानंद साहब जी का प्रोग्राम आज हम सजा रहे हैं, उनका पहला, और 4-5 प्रोग्राम इनका बनाने का इरादा है। तो आप मजा ले, आनंद प्राप्त करें नगमाओं के साथ, बस यही उम्मीद और आशा के साथ प्रोग्राम हमने सजाए हैं और बनाने जा रहे हैं। ओपनिंग सिलेक्शन तो आप सभी ने सुन चुके हैं, और ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर। एक गीत जो हसरत जयपुरी जी ने गाए हैं, लिखे हैं, सॉरी हसरत जयपुरी गाते होंगे, लेकिन फिलहाल तो गीत इन्होंने लिखा, रफी साहब जी की आवाज, शंकर जयकिशन संगीतकार। ये गीत जो है टाइटल फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, और हम निकालेंगे फिल्म दुनिया, जिसका नाम है 1969 का फिल्म दुनिया।

फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। द लेजेंड पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, ये दर्द भरे गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, इन्होंने गाकर सुनाए हैं शंकर जयकिशन की साज और संगीत पर। और ये फिल्म दुनिया का एक नगमा है, दुनिया 1969 निहति नेहनसेस का फिल्म है। डायरेक्टर प्रकाश राव जी, प्रकाश राव और एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, विजयंती माला, बलराज सानी, प्रेम चोपड़ा, जूनी वॉकर, मदन पुरी और ललिता पावर का एक फिल्म। तुम मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ पल के लिए आपको झुलाएंगे द 70s में और द 60s में और आखिरी वक्त थोड़ा सा हम और वापस चलेंगे वक्त में द 50s की ओर, क्योंकि देवानंद साहब जी के कुछ मूवीज हैं बखिन यार फाइफ्थ तोत नीहतीन सेस्टर है इसे, तो उन मूवी से गीत भी निकालेंगे और आज के प्रोग्राम में आप तक पेश करेंगे, लेकिन वो होंगे आखिरी घंटे में 8 से 9 बजे। फिलहाल तो जैसे मैंने कहा आपको झुला रहे हैं, तो नेहनन सेस्टर से वापस थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे नीहतीन आख्तन से इवन तक। और अब की बार फिल्म का नाम देश परदेश, और ये फिल्म से गीत निकालेंगे अमित खन्ना जी का लिखा हुआ, राजेश रोशन के साज और संगीत पर लता जी और किशोर कुमार मिलकर नगमा गाएंगे, ये नगमा।

0: सिवाय साहब है फिर क्या डरना। लता जी और किशोर कुमार की आवाजें, अमित खन्ना का लिखा हुआ गीत, दोनों ने मिलकर गाए राजेश रोशन के साज और संगीत पर। देश परदेश फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये फिल्म निहती नख्तनसीफ का जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी है। और मूवी में इन्होंने काम किया है प्राण साहब जी के साथ, टीना मुनीम, अजीत प्राण साहब जी, हाँ मैंने कहा, अंजद खान भी है, बिंदु टोमेल्टर, प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर श्री राम लागू, भरत कपूर, सुचित कुमार, इंद्र रानी मुखर्जी। पल भर के लिए कोई हम में प्यार कर ले, झूठा ही सही, एक इंद्रवर का लिखा हुआ गीत, रोमांटिक, थोड़ा सा छेड़छाड़ भी है इसमें। पेश करने जा रहा हूं, गाने वाले हैं किशोर कुमार और संगीतकार है कल्याण जी अनान जी। जोनी मेरा नाम फिल्म से हम गीत निकालेंगे। जोनी मेरा नाम 1970 का मूवी है, निहतिन सेवन था।
1: या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं।

भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। किशोर कुमार ने गीत को गाए हैं, इंदवर का लिखा हुआ, और वो भी प्यार भरा लेकिन छेड़छाड़ भरा नगमा। कल्याण जी, अनान जी के साज और संगीत पर जोनी मेरा नाम फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म है 1970 का ये जो फिल्म है, और देवानंद का छोटा भाई जो है विजय आनंद, जिनका नाम है गोली, और इनका डायरेक्ट किया हुआ, डायरेक्शन में ये महाटाप था, और बहुत सारे खूबसूरत मूवीज विजय आनंद जी ने डायरेक्ट किया है। खुद ही एक्टर है और लिखते भी है। और देवानंद साहब जी का एक फिल्म जोनी मेरा नाम, जिसमें हेमा मालिनी भी है, प्राण साहब जी, प्रेमनाथ, आयुष जौहर, जीवन पटमा खन्ना, और कौन है, जगदीश राज भी है, और सुलक्षणा। व्हाट्सएप पर आप बातें करना चाहोगे मेरे प्यारे सुनने वालों, तो 0320-3390-90 और है आपके कामकाज के लिए, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, तो तार का नंबर के लिए, ईमेल एड्रेस के लिए, और भी बाकी इंफॉर्मेशन के लिए www.ujala.nl। एक टाइटल सॉन्ग की ओर आपको हम ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम है डार्लिंग डार्लिंग, और ये फिल्म 1977 का है, नेहतीन सेवन सेवन तक। एक गीत जो काफी मस्ती भरी है, हिंदुस्तानी औरत को अंग्रेज ले जाकर उन्हें बनाना है मॉडर्न एरोपेस, तो गीत के जरिए कुछ सिखाया जा रहा है। किशोर कुमार गाएंगे और नाइटिंगेल आशा जी, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है, संगीतकार आर डी बर्मन। पेश करता हूं मूवी का टाइटल सॉन्ग डार्लिंग डार्लिंग।

हेलो डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, किसी नई शहर का नाम ले बाबू, देखा है मैंने दार्जिलिंग। मस्ती भरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, नाइनटिंगेल आशा जी और किशोर कुमार की आवाजें। आनंद बख्शी जी ने लिखा, राहुल डुबर्मन थे संगीतकार। 1977 का फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से हमने नगमा को निकाले। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर गोगी आनंद, देवानंद सिन्हा तमान, प्रेम चोपड़ा, महमूद जीवन, धीरज कुमार का एक फिल्म। बारिश होने लगा है बाहर स्टूडियो का और ठंड भी लग रहा है, कुछ ठंड है, हवा हवा कुछ ठंड है, जिसके इसी बेरी से कहो नहीं। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुआ था, अब कुछ दिनों से हो रहे हैं, ठीक है। दुनिया को भी चाहिए पानी, किसी किसी देश में तो बहुत पानी, जैसे हमारे सन्नाम देश में जो हाल वहां पर है, मोटर डाक से जोर तोड़ से बारिश हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के फिल्म हम देख रहे हैं कि देश का क्या हाल है, कुछ करना पड़ेगा, अटकान टोखनी से उड़ोड़ खान। उम्मीद और आशा करते हैं कि अब की बार कोई कुछ उपाय हुए और इस प्रॉब्लम का जो है सरनाम देश में कोई हल है, जो इसे हम हमेशा के लिए या इन गवाल फुरखरो दिल हम फॉर हेल्प कर सकेला। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों निकालेंगे फिल्म जिसका नाम है महल, और महल जो है 1969 का फिल्म है। निहति नेहनन से आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत किशोर कुमार को आप सुनेंगे। कल्याण जी आनंद जी की साज और संगीत पर ये नगमा। ओ तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं कैसे।

0: क्या जाने, दिन रात हम कैसे जीते हैं तेरा नाम लेके। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, कल्याण जयनान जी संगीतकार, फिल्म महल से हमने नगमा को निकाले। फिल्म 1969 का निहति नेहनन सस्ता, शंकर मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ और देवानंद और आशा परेख का एक फिल्म। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करूंगा मेरे प्यारे सुनने वालों, इस आखिरी गीत के बाद ब्रेक की ओर हम बढ़ चलेंगे। और किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत और पेश करने जा रहा हूं, फ्रॉम द मूवी कालाबास 1977। कल्याण जयनान जी का लिखा हुआ गीत है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और संगीतकार है कल्याण जयनान जी, संगीतकार है आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत। हाँ, ऐसा होना चाहिए। अशोक रॉय मूवी का डायरेक्टर, देवानंद सिन्हा का एक फिल्म।
1: ये प्यारा प्यारा समा है, प्यार कर ले।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

जाने मन किसी का नाम नहीं, किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनो, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाए हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम भी है जाने मन, मेरे प्यारे सुनने वालों, 1976 का फिल्म है, नीहत इन से संसीव तक। और

ये फिल्म में काम क्या है हेमा मालिनी के साथ प्रेमनाथ पैंटल अजीत दुर्गा होती। 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनो लो 7 बजकर आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन है ये उजाला रेडियो। मैं हूँ आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे। बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम के साथ हमेशा कुछ पुरानी यादें जो है हम मिलकर हम और आप ताज़ा करते हैं। और आज पहला प्रोग्राम हम सजा रहे हैं बहुत सालों के बाद 2003 में हमने देवानंद साहब जी का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था एनुब्राइट हम बनाएंगे इनका प्रोग्राम आज पहला है और 5 बनाने का इरादा है। देखते हैं कितनी दूर तक हम कामयाब होते हैं। बहुत सारे इनके मूवीज़ हैं और मूवीज़ में इतनी सारे खूबसूरत गाने हैं तो कभी कभी दिक्कत होते हैं गाने चुन करने में लेकिन व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं मुझसे आप भी बातें करना चाहेंगे तो 9 पर आप अवश्य आप ऐप करें। और कमाल का देश है ये बारिश हो रहे थे काले बादल छा रहे थे अब देखो नीली नीली आकाश है सूरज भी अपना रूप दिखाने लगा है और बारिश का कोई पता नहीं यह सुखाता था। मेरे प्यारे सुनो देवानंद साहब जी के अगले मूवी की ओर आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है कहीं और चल और कहीं और चल जो है 1968 का है निहति नख्तन से। ये फिल्म का एक नगमा जो डर भरे गीत में गिना जाता है हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी जो मिलकर गाएंगे इस मुतीफ स्पीकर नौफोकस में तालीम आर मोहम्मद रफी साहब जी। शंकर जयकिशन की साज और संगीत पर किशोर का आंखें देखकर सूरत पे प्यार आ ही गया पेश करता हूं ब्यूटीफुल सॉन्ग।

शोख आंखें देखकर सूरत पे प्यार आ ही गया। और मैं गलत था, हमने सोचा कि ये गीत रफी साहब जी अकेले गाएंगे, लेकिन नाइटिंगेल आशा जी का नाम हमने जिक्र किया था। हाँ, आशा जी ने भी साथ दिए हैं। खूबसूरत गीत, दर्द भरे गीत में गिना जाता है। हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन जिसका संगीतकार। कहीं और चल फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1968 का है। निहति नाख्तन से विजय आनंद ने डायरेक्ट किया है, देवानंद आशा पड़ेक, मदन पुरी, शोभा खोटे और जगदीश राज का फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि कल 14 तारीख मई को आपका सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज, और वो भी रात्रि में 8 से 11 बजे। मोरखन आवंत फनाफ आख्तूर इन आवंत टॉट 11 यूर दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट हियर ऑन यू आर। चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे मेरे बिन इस कमरे में और कौन है। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक नगमा, और संगीतकार है आर डी बर्मन, राहुल डी बर्मन। नाइटिंगेल आशा जी और किशोर कुमार मिलकर गीत गाएंगे 1977 का फिल्म बुलेट से हम जो नगमा निकाल रहे हैं, बुलेट।

0: उधर है,
1: ऊपर है,
0: नीचे है,
1: कहाँ है,
0: यहाँ है,
1: अरे यहाँ तो कोई भी
0: नहीं है।
1: कोई नहीं भाई।
2: चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे मेरे बिन इस कमरे में और कौन है। नाइटिंगेल आशा जी और किशोर कुमार, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं आर डी बर्मन की साझ और संगीत पर। 1977 का मूवी फिल्म बुलेट से हमने नगमा को निकाले हैं, कोहल बुलेट। विजय आनंद जो देवानंद का छोटा भाई है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये मूवी का, और देवानंद परवीन भाभी, कबीर बेदी, राकेश रोशन, जगदीप, इन सभी ने ये फिल्म बुलेट में काम किया है। हिरवाल्दो और मार्खरी जी, अच्छ डंकिलीवेल आपके ऐप के लिए, सांद्रा ऑथराइज वैक, डंकिवेल सांद्रा ऑथराइज वैक आपके ऐप के लिए, सही करना लांगटाइट। मार्सब्रुक का हेरेंद्रू और चित्रा जी को भी डंकिवेल हम कहते हैं आपके ऐप के लिए। एंड या चित्रा जी, कुछ नगमाएं ऐसे हैं जैसे कि ये अभी जो हमने चलाएं, और पहले घंटे में भी कुछ गाने थे जो वापस ले जा रहे हैं पुराने यादों की ओर, क्योंकि गीत कुछ ऐसा भी है जो बहुत दिनों के बाद आप शायद सुन रहे होंगे। कुलीखा मामा पारस मुली जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आपके ऐप के लिए। आइलिन जी आइट हार्लेम दंकीवाल आइलिन, आमस्टरडैम शहर का आईफी जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐप के लिए। समधिनिया हमार सुशीला चंद्रिका सिंह जी, धन्यवाद आपके ऐप के लिए। अताम सल्फेन सुशीला चंद्रिका सिंह जी, डनाह का मिक डंकीवेल मिक फॉर ये एपियर, और डनाह का इफोन डाउनलोड डंकीवेल इफोन, रोटरडम का प्रिंसेस राज को भी डंकीवेल हम कहेंगे ऐप करने के लिए, और ब्रेडा से मफराओ एंड मनेर बिहारी जी के ऐप भी आए हैं। हाँ, आज प्रोग्राम में बस है राजेश खन्ना, बस सेनालामल देवानंद सॉन्ग्स मफराओ एंड मनेर बिहारी जी, बस आप भरपूर एंजॉय करें। आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत जो है निकालेंगे 1967 का मूवी जबलतीव से, नीहतीन सेफ न सेसख जबलतीव, मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ एक नगमा, रफी साहब जी और लता जी जो मिलकर गाएंगे, एस डी बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर, कि दिल पुकारे आरे आरे आरे, आरे।

दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। रफी साहब जी और लता जी ने मिलकर खूबसूरत गीत गाए हैं, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, और वो भी सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर, एस दे बर्मन। जेवलतीफ फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनो, जेवलतीफ, और ये फिल्म 1967 का है। निहतिन सीवन से प्रोड्यूसर देवानंद और एक्टर भी देवानंद, डायरेक्टर छोटे भाई विजय आनंद, सचिन पिलगांवकर, दगड़ित अशोक कुमार, तनुजा हेलन, अंजू महेंद्रू, विजंती माला फड़ियल, मनमोहन, नजीर हुसैन, ये सभी ने ये फिल्म में भी काम किया है। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 4 मिनट ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, 7:30 फिर मिनट ऑफ द क्लॉक फन हल्फा खो चला है। उजाला रेडियो है ये, बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं, और मैं हूं आपका यार, यारों का यार, रतन राम दुलारे पांडे। स्वागरी तांटा आनी लोंडा के नाच दनहा शहर में भी प्रोग्राम से जोड़े हुए हैं, उजाला रेडियो को सुन रहे हैं, एंड सो में तीन लेकर उपथ्रेड हिलफुल सक्सेस, और धन्यवाद आपके आपके लिए। टांटा आनी लोंडा के नाच, मेरे प्यारे सुनो वालों, गीत मैं जो पेश करने जा रहा हूँ फिर एक बार लता जी को पेश करेंगे, अब की बार किशोर कुमार जी के साथ। आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत दोनों मिलकर गाएंगे, राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन की साज और संगीत पर, और गीत का बोल है लड़ी नजरिया लड़ी, और ये गीत फिल्म वारंट का है। वारंट 1975 का फिल्म है, और इस तरह से मैं पेश करता हूँ सेवा में।

लड़ी नजरिया लड़ी अरे पा लड़ी बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो लता जी और किशोर कुमार ने मिलकर गीत गाए हैं और लता और किशोर कुमार का यह नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है। संगीतकार थे आर डी बर्मन। वारंट फिल्म का नाम, वारंट 1975 का जो फिल्म है 1975। प्रमोद चक्रवर्ती जी का डायरेक्ट किया हुआ, देवानंद साहब जी सीनतमान के साथ ये फिल्म में काम किया है, प्राण साहब जी भी है, अजीत डारा सिंह, सतीश कौल, जरा मैं देखूं झांकू टो, मदन पुरी भी है और जंकी दास, सीमा कपूर, विजू खोटे, ललिता पावर, सुलक्षणा, सुचित कुमार, जगदीश राज और जग्गू यानी कि शेट्टी।

प्रभा जी अमस्टरडम सेंट्रम में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और कुछ बहुत ही लेकर्स बना रहे हैं, तो लगे रहो। और बेहद खुशी है हम कि आप ही चुन किए हुए हैं प्रभा जी अमस्टरडम सेंट्रम। धन्यवाद। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो वालों, किशोर कुमार वंस अगेन, अब की बार नाइटिंगेल आशा जी के साथ। आनंद बख्शी जी ने लिखा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मुझे प्यार कर, इकरार कर, और वो कहते हैं ना ना ना ना ना ना। प्रेम शास्त्र से हम नगमा को निकालेंगे। प्रेम शास्त्र मूवी 1974 का है। नेहतीन फिरन सेवदा पेश करता हूँ।

मुझे प्यार कर ना ना ना ना ना ना और इकरार कर ना ना ना, बस खाली इनकार, हर सवाल पर इनकार हो रहे हैं। लेकिन गीत रोमांटिक है, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी ने मिलकर गीत गाए हैं। और मेरे प्यारे सुनने वालों, प्रेम शास्त्र फिल्म का नाम, प्रेम शास्त्र 1974 का फिल्म, निहतिन फिरन सीवन तक। और मैं देखता हूं बेयाड़ इशारा जी का डायरेक्ट क्या हुआ, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी और सीना तमान का फिल्म, जिसमें बिंदु भी है, आयुष जोहर, आसिद सेन, अनवर हुसैन, देवत साहब जी, मुमताज बेगम, रहमान भी। और मैं देखता हूं सापरू साहब जी। घड़ी की घड़ी तो जो है मेरे प्यारे सुनवालों, बहुत ही रफ्तार से आगे निकल रहे हैं। आप नाराज खुदा खैर करे, नाजो अंदाज खुदा खैर करे, रफी साहब जी का एक नगमा अब की बार सेवा में, रूठना मनाना लेकिन प्यारा सा गीत है, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन जिसका संगीतकार है। निकाल रहा हूं ये गीत फिल्म प्यार मोहब्बत, 1966 का मूवी।

आप नाराज खुदा खैर करे और नाजो अंदाज खुदा खैर करे। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनोलो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत प्यार भरा लेकिन रूठना मनाना सॉन्ग। संगीतकार थे शंकर और जय किशन। 1966 निहतिन सेशन सेस्टर का फिल्म प्यार मोहब्बत से हमने नगमा को निकाले और ये फिल्म शंकर मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ है और देवानंद सैरामानो का फिल्म। आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनो लो, इस घंटे का आखिरी गीत और उसके बाद ब्रेक होंगे। फिल्म का नाम है तीन देवियां और तीन देवियां 1965 का फिल्म है। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, गीत का बोल मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, संगीतकार सचिन देव बर्मन, एस सी बर्मन, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गीत गाएंगे। अमरजीत का डायरेक्ट किया हुआ मूवी, देवानंद साहब जी, सिमी गढ़वल, नंदा, कल्पना, सुलक्षणा, आयुष जौहर, इन सभी का फिल्म है। लेसर शहर में सुन रहे हैं प्रोग्राम शारदा जी, डंकी वाला आपके ऐप के लिए। सिंध मार्ते में पूनम जी सुन रहे हैं प्रोग्राम और सूरीनाम में अनीता, डंकी लिए अलमालवेल सुनने के लिए, चून करने के लिए। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं देवानंद साहब जी के नगमाएं लगातार आपके खिदमत में पेश जो हो रहे हैं। तो ये आखिरी गीत फ्रॉम द मूवी तीन देवियां, उसके बाद ब्रेक मेरे प्यारे से नोलो। ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे।

वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, ऐसा तमाशा कहीं हमने तो नहीं देखा। किशोर कुमार और नाइटिंगेला जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, दोनों ने मिलकर गाए हैं। आर डी बर्मन, राहुल डी बर्मन।

इश्क इश्क इश्क से हमने नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही देवानंद साहब जी और सीनो तमान के साथ इन्होंने ये फिल्म में काम किया है। शबनास में भी है प्रेम नाथ, इफ्तखार, कबीर बेदी, सारीना वहब, जीवन साहब जी, ए के हंगल, कुमिला विरक, नदीरा बिरबल, यंकी दास, सुधीर और शेखर कपूर। 13 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी 8:13 ओवर द क्लॉक फन अख हो चला है। और हमने सोचा था कि इस आखिरी घंटे में 50s के भी कुछ गाने हम आप तक भी पेश करेंगे, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि किस तरह से जा रहे हैं ये प्रोग्राम, वक्त तो बहुत ही कम है, गाने बहुत ज्यादा, तो मिस्किन खामद फैफ तक नीत हाल, लेकिन वह ब्लाइ फसा सो ऊपर नीचे एंड धीरे धीरे एकदम नीचे टू जाने। तो मेरे प्यारे सुनो वालों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत करता हूँ। ये उजाला रेडियो है, बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं, और आज 7 साल के बाद मैं पेश कर रहा हूँ प्रोग्राम देवानंद साहब जी का। 5 प्रोग्राम सोचता हूँ बनाने का और एकदम खूबसूरत गानों के साथ आपका दिल आने वाले 5 हफ्ते देवानंद साहब जी का हम बहलाना चाहेंगे। देखते हैं कि कितनी दूर मेरा ये कोशिश कामयाब रहेंगी। फिलहाल तो आज ये प्रोग्राम जो लाइव एंड डायरेक्ट यूआरक्यू स्टूडियो रोटरडैम से पेश हो रहे हैं, वहां से स्वागत करता हूं। और सुनील को भी अम्स्टरडैम शहर का, सुनील जो व्हाट्सएप किए हैं, सुनील दांकीवेल मोरहनहाफन। कल मेरे प्यारे सुनने वालों 14 तारीख फिर 3 मई को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे 3 घंटे लगातार आपका सेवा करने चलाएंगे, लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज एकदम लाइव एंड डायरेक्ट, वो प्रोग्राम भी हमेशा की तरह पेश किया जाएगा एंड अनकंट्रोल नतुलक एप नाडो स्टूडियो। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो, जैसे मैंने कहा हम कोशिश करेंगे नीचे जाने के लिए, फिलहाल तो हम 1965 में जाकर इस वक्त पहुंचे हैं एंड दैन इज दैन नोग अ लॉन्ग वे टू गान नार द 50s। आई डोंट थिंक दैट वी विल गान रेड, पर्सनली थिंक इट नीट। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, अगले गीत का बोल शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, संगीतकार सचिन देव बर्मन, एसडी बर्मन, रफी साहब जी गीत गाएंगे और फिल्म का नाम है गाइड। गाइड 1965 का फिल्म है, 1965 पेश करता हूं।

ढल जाए आए रात ना जाए। तू तो नहीं आए लेकिन तेरी याद बहुत सताए। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे से नौलो शरेंद्र जी इनका लिखा हुआ गीत रफी साहब जी ने गाकर सुनाए हैं, और वो भी सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर। एस डी बर्मन, फिल्म का नाम गाइड, और गाइड जो है 1965 का मूवी है, निकटीन फाइव एंड सिस्टर। प्रोड्यूसर एक्टर ये मूवी का देवानंद साहब जी, और डायरेक्टर विजय आनंद इनका छोटा भाई, और साथ दिए हैं ये फिल्म में और किशोर साहू, वहीद रहमान, अनवर हुसैन, लीला चिटनिस। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनोलो, हर एक बुधवार रात्रि में 6 से 9 बजे बैक टू द फ्यूचर आप सुन सकते हो। और प्रोग्राम आज पहला देवानंद साहब जी इनके मूवी से निकाले हुए इनकी खूबसूरत यादें, नगमाएं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है मूवी में, प्लेलिस्ट को सजा रखा है, और प्लेलिस्ट से नगमाएं निकाल निकाल कर आप तक पेश कर रहा हूं। इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अलमेर बायत में जो रहते हैं लेकिन इस वक्त लेकर वैकेंसी से है स्विट्जरलैंड में स्वागरी राज नंदन और आरती नंदन जी सरहज, तो भरपूर आप दोनों एंजॉय करें स्विट्जरलैंड में, और वहां जाकर भी उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं। बेहद खुशी है हम कि दूर दूर लोग जाकर भी उजाला रेडियो पर चून किए करते हैं। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिक ऑलवेज ऑन यू आर। तो स्वागरी राज और सरहज आरती नंदन, एंजॉय एंड खनित फन मोय यूनिवर्स, क्योंकि और भी नगमाएं आने वाले हैं खूबसूरत देवानंद साहब जी का। अनूप महाबाली भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। अनूप महाबाली जी एडन बॉस डंकीवेल आपके ऐप के लिए सही नचो का प्यूआर उजाला रेडियो। जोशीला के ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम है जोशीला मेरे प्यारे सुनने वालों, 1973 निकटीन द्रियन सेफत का ये फिल्म है, और ये फिल्म का एक नगमा, एक रूठना मनाना छेड़छाड़ सॉन्ग लेकिन बहुत प्यार भरा, हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी इनका लिखा हुआ गीत है, और राहुल बर्मन आर डी बर्मन की साज और संगीत पर किशोर कुमार, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और लता जी की आवाजें आप सुनेंगे ये नगमा।

दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दे, क्योंकि कल का भरोसा है क्या, चलो आज कह दे। नाइटिंगेल आशा जी और किशोर कुमार की आवाजें, हमारे प्रिय सहील लुधियानवी जी इनके हाथों से लिखा हुआ ये गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। राहुल बर्मन आर डी बर्मन की साज और संगीत पर फिल्म का नाम जोशीला, और जोशीला 1973 का फिल्म है। नीहत इंद्रियन सीव यश चोपड़ा जी इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी, देवानंद हेमा मालिनी राखी पद्मा खन्ना का फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, घड़ी की तरफ मैं देखूं तो ठीक सरे 8 का वक्त है, 25 हालफ नेह 9 बजे तक आपका सेवा हम करेंगे लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। देवानंद साहब जी इनका प्रोग्राम आज बैक टू द फ्यूचर में 7 सालों के बाद पेश कर रहा हूँ। इनकी मूवी से निकाले हुए खूबसूरत नगमाएं आज का प्लेलिस्ट सजा रखा है, और एक एक निकाल कर प्लेलिस्ट से आप तक हम पेश कर रहे हैं। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग, रफी साहब जी अब की बार गीत गाएंगे। सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर एस डी बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने, और ये फिल्म 1963 का है। रफी साहब जी

भवर करे पुकार और प्यार का राग सुनो रे। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालो। नन अदर देन द लेजेंड पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी, इनकी आवाज में गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ आप सभी ने सुने और जिसका संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। एस दे बर्मन, तेरे घर के सामने फिल्म का नाम, इतनी हतिंद्रियन से 1963 का फिल्म, देवानंद साहब प्रोड्यूसर और एक्टर, डायरेक्टर छोटा भाई विजय आनंद नूटन ने देवानंद साहब जी के साथ काम की है ये फिल्म में। ओम प्रकाश जी भी है, राजेंद्र नाथ और कौन है, रशीद खान, प्रवीण चौधरी, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और मैं देखता हूं यंकी दास भी है। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अगले गीत का बोल, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत जो किशोर कुमार गाएंगे और जो देवानंद साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है फिल्म हरे राम हरे कृष्ण पर। यह फिल्म हरे राम हरे कृष्ण 1972 का फिल्म है। संगीतकार राहुल बर्मन, आर डी बर्मन और पेश करता हूं गीत देखो दीवानों तुम ये काम ना करो, राम का नाम तुम बदनाम ना करो।

देखो दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। किशोर कुमार ने गीत गाए हैं, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे राहुल बर्मन, आर डी बर्मन। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा। फिल्म हाँ जी, 1972 का फिल्म है और ये फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी। और ये फिल्म में सीनत अमान भी है, मुमताज जी, जूनियर महमूद, राजेंद्र नाथ, अंशिला सखदेव, इफ्तखार, प्रेम चोपड़ा, किशोर साहू, राज किशोर, इंद्रानी मुखर्जी। सत्या जी प्रणाम से जोड़े हुए हैं अम्स्टरडाम शहर में, तो सत्या जी को भी हम दंग की वेल कहेंगे एप करने के लिए। एंजॉय यू आर एंजॉय देवानंद की जो नगमाएं हैं। वक्त तो निकला जा रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, लेकिन फिर भी तीन गाने और हैं जो आप तक हम पेश करना चाहेंगे। ले चलते हैं आपको फिल्म असली नकली। फिल्म असली नकली जो है 1963 का, नहीं हतिंद्रियन से एक गीत निकालूंगा रोमांटिक सॉन्ग, रफी साहब जी जो गाएंगे, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत है और जिसका संगीतकार शंकर और जयकिशन, ये नगमा।

0: जख्मी वही हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का,
1: छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, थोड़ा सा प्यार हो गया। मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुना है, रोमांटिक सॉन्ग जिसका संगीतकार शंकर और जय किशन। असली नकली फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म इंद्रियन से सखुनी सौतीर्जत, और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है ऋषिकेश मुखर्जी देवानंद साहब जी ने ये फिल्म में काम किया है साधना जी के साथ, मुकरी लीना चिस्नस और नाजिर हुसैन भी है, अनवर हुसैन किश्तो मुखर्जी, और जरा देखूं तो हरी शिव दिसानी। हाँ जी, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं और धीरे धीरे हम एंड तक बढ़ रहे हैं, लेकिन एक रोमांटिक सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ जरूर से जरूर निकालेंगे फिल्म, जिसका नाम है गैम्बलर। गैम्बलर 1971 का फिल्म है, नहीं नसीब तक ये फिल्म से निकालेंगे नगमा राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाएंगे सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर, एस सी बर्मन के साज और संगीत पर किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। नहीं फोकस में अच्छा किशोर कुमार एंड लता जी। हाँ जी, किशोर कुमार और लता जी, अपने होंठों की बंसी।

अपने होतों की बंसी बना ले मुझे। रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो, प्यार भरा नगमा राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर मिलकर गीत गाए हैं लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार। फिल्म का नाम द गैम्बलर ऑफ नीड द होन गैम्बलर, गैम्बलर 1971 का फिल्म है। नहीं हती नहीं नसीब, अमरजीत ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है और ये फिल्म देवानंद साहब जी ने काम किया है सहिरा के साथ। सहिदा भी है शटगौन शत्रुघ्न सिन्हा, सापरू साहब जी, किशोर साहू, सुधीर इफ्तिखार, मुमताज बेगम जीवन मनोरमा, सचिन पिलगांवकर, जगदीश राज, रशीद खान, बिरबल। या मूवी फिल्म, खूबसूरत गाने हैं ये फिल्म में भी। मेरे प्यारे सुनो, अब वक्त आ गया है कि आज बैक टू द फ्यूचर में हम आखिरी नगमा पेश करेंगे। आखिरी नगमा पेश करने का वक्त आ गया है और इस आखिरी गीत पेश करने के बाद हम स्टूडियो से रुखसत होंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का सिलेक्शन देवानंद साहब जी का और जिस तरह से प्रोग्राम हमने सजाए हैं बनाए हैं बैक टू द फ्यूचर एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से, आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। ये प्रोग्राम अगले हफ्ते 20 तारीख मई को फिर हम सजाएंगे, लेकिन कल मोरख बनेकर फिर 3 मई रात्रि में 8 बजे से 11 बजे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज एंड 7 रख बने करो 7 रख 16 लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर रात्रि में 7 बजे से 12 बजे आपका सेवा हम करेंगे विद द ब्यूटीफुल लोकल्स। आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर किशोर कुमार को आप सुनेंगे। गीत फ्रॉम द मूवी पेइंग गेस्ट और ये फिल्म 1957 का है। नीति तक सुबोध मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ, जिसमें देवानंद साहब जी और नूटन ने काम किया है। रहा भूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

रोकती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे जिसे।

ये इशारे ये अदाएं, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो

0: यह है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: कभी कपूत नहीं हो सकते बच्चे इस भा...

0: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदेबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो देबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्टर कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो